मैं अलविदा लेने के लिए आशा करते हैं कि आपका समय अच्छी तरह बीता। शुभ रात्रि, आप एंजॉय कीजिए। दो इट्स अबिट कोल्ड और विंटर है कीपुम। तो चलो हम लास्ट सॉन्ग आपके लिए छोड़े जाते हैं इस वादे के साथ में, वी विल गेट इन टच अगेन। हम फिर जुड़ जाएंगे इसी तरह स्टूडियो में नेक्स्ट सैटरडे, और साथ साथ में हमारा जो वीडियोज है KYC है और टेलन सीरीज है, ये चलता रहेगा। कीप सपोर्टिंग अस, जब भी मौका मिले देन जुड़ जाइए। तो चलो नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम साहिल, बाय।